0: आए न काए पाए पोड़ जित सिर सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाया अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मुलक च दे लम्मी नादर निहालिए जो सब ना नहारिए तेरे हा पासा टालिए गेछला है ऊपर खाली है ऊपर खाली है
1: ਪਾਈਏ ਸੁਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਹ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख भीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश

जाए, हमारा खसम सोए। एक साहेब सिर छत, दूजा नाहे कोए। ज्यो पावै त्यो राख, राखण हारिया। तुझ बिन अवर न कोई नदर निहारिया। ज्यो पावै त्यो राख, राखण हारिया। तुझ बिन अवर न कोई नदर निहारिया। रहाओ प्रत पाले प्रभ आपे, काट काट सारिया। जिस माने बुठा आप, तिस ना विसारिया। जो किश करे सो आप, आपन पाणिया। भगता का सहाई, जोग जोग जानिया। जप जप हर का नाम, कदे ना चूरिया। नानक दरस प्यास, लोचा पूरी है। सो कहो टल गुर सेवी, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा घर तीजा भगत जना की हर जियो राखै

वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, हे पौड़ी वड्डी हो वड्डा अपार, तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जप।

जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारी जी तू जिया का दातार। हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर ना जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तोटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे श्रेष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। साव तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जैसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर विखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पैले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबियली। मन एक ना चेत समूढ़ मन हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दोस्त सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब वैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंत। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जिते उठवा त्युत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सकन कोई।
एक वर्जन।

दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बह भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो

ज्योत रूप हरियाप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बा

जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दर्शन प्यासी दिन सरात, चित भवन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेवी, एहन

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एकोत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो

जय जयकार जग गावे, मन चिंध्यड़े फल पावे। सही सलामत नहाए आए, अपना प्रभु त्याए। संत सरोवर नावे, सो जन परम गत पावे। मरे न आवे जाई, हर हर नाम त्याई। यो ब्रह्म विचार सो जाने, जिस दयाल होए भगवान। बाबा नानक प्रभ शरणाई, सब चिंता गणत मिटाई। यो ब्रह्म विचार सो जाने,

0: बायो जो चाहत सोई मन बायो कर कृपा हर नाम दिवायो।
1: सर्व सुखर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई।

0: अकाल मूर्त जूनी सबं गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार्ड श्लोका नाग शोक महले पहले के लिखे टूडे असुराजे की तुनी शोक महला पहला बड़े हारी गुरे अपने देहारी सदवार जिन मानसे देवते की करत न लगी बार महला दूजा जे सोचन दोग भी सूर चढ़े हजार एते चानण होंदया गुर बिन को रिदा
1: महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मने अपने सुचेत छुट तिल बुआड़ जो सुंगे इंद्र खेत खेत इंद्र छुटिया कहो नानक सौ नहा फलिया है फुलिया है।

0: जो विष्णु त्याम जेते लख नाम करता सुख मूर्त नाम जन जन काया काया का सत्या मंश तो गुप्जे देने के विचार दे दे मंगे सासा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़े आरा खारा बवेकार एक होंदा खचले था उतना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया काराया कार ओ जिया किस तू है जाने तिना भी तेरी सार नांग पगता बुक्सलान सच नाम अदार सदा आनंद रहे दिन राते गुणवंते पाशा
1: महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुमियार घर भांडे टंकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार नानक जिन कर

0: दाता पाया दाता पाया
1: सतगुरु विच आप रखियो अनकर प्रगटाक सुनाया सतगुरु।

सचो सच बरताया, जिस तू देत से मिले सच कर दिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया।

0: दिए पटपट परिये साथ, पटपट बेड़ी पाइये पटपट गड़िये खात, परिये जेते वर्ष वर्ष, परिये जेते मास, परिये जेती आरजा, परिये जेते सास, नानक लेखे की गल और होमे चखना जा।
1: पहला लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया,

कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ न माया साध संग सब दुख मिटाया

0: नानक मेरे शरीर का एक राति कृतवा हो, जुग जुग फेर मिटाइए ज्ञानी बुझेता है, सजुरा श्लोक का तरम गिरथवा हो, तेरे तेरस जते का जोर गिरथवा हो, द्वापुर तपे का सत गिरथवा हो, कल जुग रा सगन का कूड़ गैरथवा हो।
1: भला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी, सच में है छह सच रहे सबको सच समावे, रिग कह रहा प्रभुर राम नाम देवा मैसूर।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती दे सहाय वार। श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया

बबेकदान विसाहदान प्रसादान दाना सिरदान नाम दान सिर अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगों जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह हे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुर धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाने आंदे मान नेताने आंदे तान ने ओटे आंदी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत

0: तेर धोती कखाई हथ छुरी जगत कसाई निर्वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तान लै पूजे प्राण अपा ख्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे ना जाना देखे चौंका गड्डी कर उपराए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा फिटे तन फिटे फेट करे मन झूठे चुरी परे
1: कहो नानक सच त्याई है सोचो हो वे ता सच पाया पो।